अकड़ रही है सीना सल सिख दी, अकड़ रही है सीना सल सिख दी, ला दे मोहने पुठी खल सिख दी, ला दे मोहने।

0: चलाई
1: हे सतगुर मेरा दे साई मन अपने चरणा विच लाई
0: हे सतगुर मेरा दे साई मन अपने चरणा विच लाई
1: हे सतगुर मेरा

0: वाहिगुरु कर दो कार्ज रास, कर दो कार्ज रास वाहिगुरु कर दो कार्ज रास।
1: आओ जिन्हां ने अरदास कीती एक बारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में अदब सत्कार ना सीच काके एक बारी फिर रसना पवित्र करो प्यार ना कह दो सतनाम श्री वाह। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुहब्बत, बहुत प्यार, बहुत रिस्पैक्ट तुसा ने बख्शिश की। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोट अन कोट धन्यवाद जिन्होंने सानू मनुखा जन्म दे के सोझी बख्शिश की। असी अपने जीवन में किस दिशा वल तोरना है सतगुरु रहमत करनगे। गुरु के वजीर हेड ग्रंथी साहबान समुचे ग्रंथी साहबान का धन्यवाद जिन्होंने बहुत कोआपरेशन बहुत कोआपरेट किया। गुरु के महान कीर्तनी कथावाचक सबना का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु के सेवादार टहलुए लंगर विच सेवा करने वाले सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। समुची संगत का प्रधान साहब सरदार हरपाल सिंह जी गरेवाल, छोटा जिहा सी बच्चा है जिवें हाथ विच आपां खड़ा के अपने बच्चे नूं पालदे हां, बिल्कुल मेरे नेड़े पिंड है बन्ने नाल बन्ना जिन्हों आपां कह दिंदे हां, जिथे साडे पिंड की जमीन की हद मुकदी है नाल ही पिंड की शुरू हो जाती है। मेरा पिंड भमद्दी है, तहसील खन्ने विच पैंदा है, खन्ने तो लुधियाने वालू 8 किलोमीटर है, ते नाल ही साडे पिंड है घुंघराली राजपूतां। प्रधान साहब उस नगर तो ने सरदार हरपाल सिंह जी गरेवाल, मैं उन्होंने उन्होंने समुची मैनेजमेंट का चेयरमैन साहब सरदार रणवीर सिंह जी परमार, सैकटरी साहब सरदार दलजीत सिंह जी ढिल्लों, खजानची साहब मिनहास साहब अते जिन्हें भी एग्जैक्टिव मैंबर साहबान ने डायरैक्टर साहबान ने सबना का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, ते होई जिन्हियां भी भुल्लां होईयां ने उन्हां दी हथ जोड़ के खिमा। ये हो नहीं सकता कि बंदा भुल्ला ना करे, जे भुल्ला नहीं तो मेरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नहीं, बंदा तो हरेक भुल्ला करदा, भुल्ला ना चितारनियां खिमा कर देना। भाई वीर सिंह ने बड़िया कमाल दियां लाइनां लिखियां ने, संगत विच मेरे बहुत प्यारे मित्र भाई कुलविंदर सिंह नाहल बैठे, ढाडी कला नूं अंतां दी मुहब्बत करदे ने, बहुत हार्ड वर्क करके कोशिश होंदी इहनां दी कि जदों ढाडी जिथे ने शुरू करना मैं पहुंचा। भाई मनजीत सिंह भाम सुखबाणी मैगजीन भी करते ने, ते सिख मसलियां ते खुल के लिखते ने, वह भी संगत विच मौजूद ने, बहुत बहुत धन्यवाद। भावें ना लैने अलाओ तो नहीं करते, पर प्यार है, प्यार नूं तुसी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं भाई वीर सिंह दे चार लाइना कह के आप जी नूं फतेह बुलाउण लगा, ते फिर नाल दी नाल आनंद साहब दीआं 6 पौड़ियां दा आरंभ हो जाएगा, गैन करनियां ने। भाई वीर सिंह कहिंदे ने खेड़े चमन विच नाला बहिंदा ना जाणा मुड़ वहे कि ना, खेड़े चमन विच नाला बहिंदा ना जाणा मुड़ वहे कि ना, रुत फिरे गुलजार उदासे सुंदरता मत लहे कि ना, हे दिल सखियो सदर ला लो ना जाणा मुड़ लहे कि ना, ए जिंदड़ी दा की प्रवासा प्रवासा आउंदी रुते रहे कि ना, जिंदगी रही ते मिलन दी आस लैके जा रहे हां, जिंदगी ना रही ते इन्नी सेवा प्रवान करनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ रल मिल के आनंद साहब दीआं 6 पौड़ियां दा गैन करिए, फिर आपां अरदास विच शामिल होईए।

0: की फतेह फतेह भाई गुरु जी का खालसा भाई गुरु जी की फतेह फतेह
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: टूटा करो तुम पहरदास जियो पिंड सब मात पिता हम बारक तेरे कोई न जाने तुम्बरा अंता

0: तेग पंथ की राज करेगा झूलते दिशान रहे लागते दीवान रहे
1: बोले सुन हाला
0: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।

रास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अड़सठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता।

सूझ है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, अंधश्रीक है, अंधलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्य समस्ती निधान्य, नमो देव देवे अपेखी अपेहवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ती स्वरूपे, परभंगी परमाथे, समस्ती बेपूते, कलंकं बिना निकलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अपोगी।

सर्वत्र गौने की सर्वत्र पहुने की सर्वत्र दिशे की सर्वत्र पिसे की सर्वत्र राज्य की सर्वत्र साजे की सर्वत्र दीने की सर्वत्र लीने की सर्वत्र जाहु की सर्वत्र पाहु की सर्वत्र दिशे की सर्वत्र पिसे की सर्वत्र काल की सर्वत्र पल की सर्वत्र हंता की सर्वत्र गंता की सर्वत्र पीखी की सर्वत्र पीखी की सर्वत्र काजे की सर्वत्र राजे की सर्वत्र सुख है की सर्वत्र पुख है की सर्वत्र त्राण है की सर्वत्र प्राण है की सर्वत्र देश है की सर्वत्र पीस है की सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है की सर्वत्र जापे है की सर्वत्र थापे है की सर्वत्र पान है की सर्वत्र मान है की सर्वत्र इंद्र है की सर्वत्र चंद्र है की सर्वं कली में की परमंग फही में की आकल अला में की साहिब कलाम में की हुसन अल वजू है तमाम रजू है हमें सुल सलाम में सलीख तम धाम है गनीमल सिकस्त है गरीब अल परस्त है बिलुंद अल मकान है जमीन अल जमान है तमीन जुल तमाम में रजू अल निधान है हरीफ अल अजीम में रजायक यकीन है अनेक उल तरंग है अपीद है अपहंग है अजी जुल निवाज है गनी मुलखिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभूत प्रवाह है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंगाध रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनाम्य त्रिभंगी त्रिकाम्य त्रिवर्गंग त्रिबाद्य अगंजे अगाध्य सुभंग सर्वभागी सुसर्वा अनुरागी त्रिभुक्त स्वरूप है अक्षज है अशूत है किन्नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत।

है अतूत है, अनास है, उदास है, तंध है, अबंध है, भगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं

कृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है जपा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पव पंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है कलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म वस है जस की जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो।

नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अचरी छंद अजय अलय अपह अभय अपहू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलीख अपीख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलिखे उजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजला नामे समस्तल निवासे नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते

ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताका कृपाहन अनुमानत महा मूड़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नेह पेव आप अपनी बुद है जीती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तीती तुमरा लखा न जाय पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जीरज सीत जकीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं समट भयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख वार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जी अस तुझतव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सबटा।

सर्वठौर मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम परजग माता ग्रंथ करा पूरन सबराता किरवक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन कोशा करता श्री इस तुझ जब पहे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न तसे व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाई।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दस होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतक स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ। दर्शन दीदार उपदेश जी का त्यांतर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगतां। हठियां जपियां तपियां जिन्हां आप जी दा नाम जपिया। वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही। देख के अणडिठ कीता तिन्हां प्यारियां। सचियारियां दी पवित्र पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चराए गए। बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता। जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए। पुठियां खल्लां लुहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासा संग निवाही। तिना समूह शहीदां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्श

अंतर्गत होके सत्संग जी अपने दो मिनट वास्ते नाम नूं सुनना करना जीओ। नेत्र बंद रखने एकाग्रता दे नाल अपने सरणा विच ध्यान देना। शब्द सुनदे आ जिन्हां गुरमुखां नूं उन्हां ने शब्दां विच ध्यान रखना, जिन्हां नूं नहीं शब्द सुनदे उन्हां ने दिल दी धड़कन दे नाल जां नाभ चक्कर ते जिथे भी शब्द सुनदा है सिमरन सुनदा है नाम दा अभ्यास करदे करदे आपां नूं ये प्राप्तियां हुंदियां। आपां ने सुरती दे नाल नाम नूं सुनना करना है, जिवें आपां जपदे सी वाहिगुरु, सुरती दे नाल आपां ने नाभ चक्कर ते हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन है जां कंठ चक्कर जिथे गले चों आवाज आउंदी सी उत्थे आपां ने ध्यान दे के नाम नूं सुनना करना जी। दो मिनट वास्ते किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी।

गुरु ग्रंथ जी मानियो, जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा। खुआर होए सब मिलेंगे, वाहिगुरु नाम जहाज है। जो सरदा कर सेव दे

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वडभागे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा कमलां विच बैठ के सज के गुरबाणी पढ़ सुन के लाहे प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी अपार कृपा मेहरामत होई है। संथिया क्लासां दी प्रारंभ तुहानूं मुख रखदिआं होइआं हजूर दे चरणा विच अरदास होई है। सवेरे 9 to 10 अते शाम नूं 8 to 9 बजे तक रोजाना ही गुरबाणी संथिया क्लासा गुरु घर दे गैलरी हॉल विखे होया करनगियां। सवाब संगतां दे चरणा विच बेनती है जिन्हां ने अजे तक नहीं रजिस्टर कीता आप जी गुरमुखां नाल संपर्क करके रजिस्टर करके क्लासा विच हाजिर हो सकते हो हिस्से लै सकते हो। सो आप संगतां दे चरणा विच बेनती है सुभागे वडभागे समय का लाभ उठाइए वध तो वध क्लासां दे विच हाजरियां भर के पावन पवित्र गुरबाणी की शुद्ध संथिया करके अपने जन्म नूं सवारीए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे दरों करो खुशियां प्राप्त करिए। सो आप संगतां दे चरणा विच बेनती है अरदास होई है प्रारंभता दी। सो आप जी ने हुण क्लास वास्ते उपर गैलरी हॉल दे विच पहुंचण दी कृपालता करनी उत्थे आप जी नूं अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा का सदका गुरबाणी संथिया प्रारंभ करवाई जाएगी। आप जी ते सच्चे पातशाह जी कृपा करन चढ़दी कला दे सहत सारे ही कार्ज होण यही आप जी ने समूह संगतां ने सच्चे पातशाह दे चरणा विच अरदास करनी। आओ अगले समय वास्ते बेनती करा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे हजूरी कीर्तनीए सत्कार योग भाई साहब भाई कमलजीत सिंह जी रबाबी आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन सतगुरु जी दे निर्धारित रागां अते प्रमाणित साजां दे नाल सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वडियाईया। तुद विण सिद्धि किनै न पाईया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिए है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसार है ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोका। राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास।

तिन कुर्बान। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी, से मुक्त पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तपहे जपहे बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैं डासाई। जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ै पई ले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक।

कह नानक तह सुख होआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ

सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे आप पूरे बिनवंत नानक गुर चरण ला।

सब सदारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसारो।

तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दा शाह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा हो, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।